0: बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।
1: Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, let's start the fun.

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। तो दोस्तों, रेडियो के इस पर मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त ज्योति। जी हाँ, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप सिर्फ और सिर्फ 107 एफएम रेनबो पर। तो दोस्तों, आज तारीख है 16 जून, यानी कि हल्की सी धूप है और मौसम कह रहा है कि आज का दिन गंभीर होने का तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, इसलिए आज नॉनस्टॉप गपशप में मैं बात करने वाली हूँ उन लोगों की जिनके बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। जी बिल्कुल, लेकिन जिनकी बातों में सच्चाई ढूंढना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे प्यारे दुलारे और नंबर वन झूठे, यानी कि हमारे दोस्तों की। अच्छा दोस्तों, मुझे एक बात बताइए, क्या आपका भी कोई एक ऐसा दोस्त है जो ग्रुप चैट पर प्लान बनाते वक्त कहता है, हाँ भाई मैं बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ, और वो 5 मिनट असल में 2 घंटे बाद भी खत्म नहीं होते। जी हाँ दोस्तों, आज हम बातें करने वाले हैं इन्हीं दोस्तों के विषय में, यानी कि नींद का कच्चा चट्टा खोलने वाले हैं। तो दोस्तों, कहीं मत जाइएगा, मस्ती के सफर की शुरुआत तो कर दी है इस प्यारे से गीत के साथ। और आपकी नजरों में भी कोई आपका ऐसा ही दोस्त है जो कहता कुछ है और उसे करने में बहुत टाइम लगते है, यानी कि बहुत ही सफाई से वो झूठ बोल जाता है। अगर आपके पास भी कोई एक ऐसे दोस्त है तो हमें कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारा नंबर है 2213134123314 दोस्तों। बिल्कुल, और जब तक आप नंबर डायल करते हैं अपने फोन से, तो क्यों ना अगले गीत की ओर रुक किया जाए।

0: तो चलिए दोस्तों गपशप को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, ये सुनते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। हेलो,
1: गुड मॉर्निंग ज्योति जी।
0: गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बताइए आपका शुभ नाम।
1: मैं मुनीरुद्दीन लश्कर बात कर रहा हूँ, दक्षिण सांगरे लाहौड़ से।
0: जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे सभी श्रोताओं से?
1: सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इतना बेहतरीन गाना बजाने के लिए और इतना रियल टॉपिक लाने के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: देखिए ज्योति जी, आजकल दोस्त या रिलेटिव बात करते हैं कुछ एक और साथ है कुछ और एक, क्योंकि हमारे जो मोबाइल है हमें झूठ बोलना आसान कर दिया है, क्योंकि हम है घर में कुछ काम करते हैं, लेकिन वो पूछता है तो मैं बोलता है मैं स्टेशन पर कि और कुछ जगह पर है, ये तो ठीक नहीं है, लेकिन कुछ मजबूरी से हम ये फोन को इस्तेमाल करते हैं, एक जुट के माने जरिया लेते हैं, क्योंकि दोस्त के साथ रिश्ता नहीं टूट जाता,
0: बिल्कुल नहीं टूट
1: जाता, ये नहीं जाता है, इसीलिए हमारे मोबाइल ही ये काम कर देता है।
0: बिल्कुल, लेकिन मोबाइल जहाँ अगर झूठ बोलने में सहायता देता तो वहीं सच पकड़ने में भी वो मदद कर देता है।
1: एहसास तो बाद में पकड़ जाता ही है, लेकिन कुछ समय के लिए तो हमारे रिलीफ देता है।
0: हाँ बिल्कुल, ये बात तो है कि वो रिलीफ तो जरूर देता है तो उस वक्त, लेकिन कुछ देर के लिए सही, पर गुस्सा तो जरूर आता है अपने दोस्त पर।
1: तो आपका इसलिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ये हमारे साथ बोलने का तरीका बता दिया, इसीलिए मेनी मेनी थैंक्स।
0: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का, थैंक यू। तो दोस्तों स्टूडियो में समय हो चला है 10:17 और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप। तो बातों और गीतों का सिलसिला दोस्तों यही यूं ही चलने वाला है ठीक सुबह के 11 बजे तक, तो मेरे साथ यूं ही बने रहिए।
2: ऐसे क्या देख रहे हो?
3: सपना, बहुत दिनों बाद तुम्हें।
2: बहुत दिनों बाद क्या?
3: बहुत दिनों बाद तुम्हें इतना सचते सवरते देखा है।
2: तुम्हारा जन्मदिन जो है, हैप्पी बर्थडे, आई लव यू।
3: फिर कहो।
2: आई लव यू।
3: जोर से कहो।
2: आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू।

बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर।

जो ये सुनने से पहले हम बातें कर रहे थे कि दोस्तों की झूठ यानी कि झूठी बातों के विषय पर बातें कर रहे थे, मतलब हमारी दोस्तों की डिक्शनरी में बस 5 मिनट का मतलब होता है कि मैं अभी सोकर उठा हूँ, ब्रश करूँगा, चाय पीऊँगा और फिर सोचूंगा कि आना है या नहीं। और वो स्कूल कॉलेज वाला झूठ याद है आपको, जब एग्जाम के 1 दिन पहले कॉल करो तो दोस्त रोते हुए कहते थे कि भाई मैंने तो अभी तक किताब खोलकर भी नहीं देखी, फेल होने वाला हूँ। और भाई जब रिजल्ट आता था तो वही दोस्त टॉप कर जाता था, तब दिल से सिर्फ एक ही आवाज निकलती थी कि तुमसे बड़ा झूठा कोई नहीं है दुनिया में। और दोस्तों वो बाइक या गाड़ी मांगते वक्त का झूठ, भाई सिर्फ 2 किलोमीटर जाना है, पेट्रोल डलवा कर दे दूंगा। और भाई जब गाड़ी वापस मिलती है तो एकदम खाली टैंक के साथ। तो दोस्तों आज सोचती हूँ तो इतनी हंसी आती है कि हम कितने भोले थे जो हर बार उनके उन घिसे पीटे झूठों पर यकीन कर लेते थे। और दोस्तों कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी अपने किसी ना किसी दोस्त का चेहरा आ रहा है ना, मुस्कुराइए मत, उस दोस्त को याद करते रहिए। जी हाँ, और मैं लौटती हूँ इस प्यारे से गीत के बाद।

0: दोस्तों इस आशा को पूरा करते हुए आगे बढ़ते हैं इस कार्यक्रम में। जी हाँ, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, तो आइए सुनते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। हेलो, नमस्कार। गुड मॉर्निंग जीतू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो बताइए, आपके कौन से ऐसे दोस्त है जो आपको बहुत देर तक इंतजार करवाते हैं? बोलते तो है 5 मिनट पर, आते हैं 2 से 3 घंटे की देरी पर।
1: बिल्कुल जी, ऐसे तो बहुत सारे मतलब दोस्त हैं, लेकिन दो चार दोस्त ऐसे हैं जो टाइम पर तो मतलब बोलते हैं कि हम आएंगे आज 9 बजे सुबह में, है ना, कभी टाइम देते हैं, लेकिन टाइम से आते नहीं है। उनका मैं नाम नहीं लूंगा, नाम लूंगा तो यदि सुन रहे होंगे तो समझ जाएंगे कि वो मेरे बारे में बोल रहे हैं। तो दो चार दोस्त ऐसे हैं जो जैसे कि होता जी कहीं कभी कभी, तो जैसे मैं अपने दोस्त से कभी कभी ऐसा वादा कर देता हूँ कि शाम को मिलने वाले हैं, लेकिन होता है 10 मिनट आधे घंटे कभी कभी लेट हो जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो लेट हो जाना अलग बात है, लेकिन अब वो भूल गए और फिर जब कॉल करते तो उन्हें याद आता, अरे भाई आज तो मिलना था, मतलब पहुंचना था जिस वक्त, उस वक्त वो सो कर उठ रहे हैं। तो उस वक्त आपको कैसा लगता होगा जब ये पता चलता होगा बाद में आप सभी को?
1: ये बिल्कुल जैसे कि अब समय दिए हैं, अब हम कहीं पर इंतजार कर रहे हैं, वेट करते हैं, और वो बोला है कि हम 9 बजे तक आ जाएंगे। हेलो हेलो हेलो हेलो।
0: तो लगता है दोस्तों शायद किसी कारणवश, जी हाँ, हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी, आपको मेरी आवाज आ रही है?
1: हेलो हेलो,
0: हाँ जी, तो जी आपको मेरी आवाज आ रही है?
1: हाँ जी बिल्कुल जी,
0: हाँ जी,
1: तो वही बोल रहे थे जी, कहीं हम लोग हम जैसे कहीं पर घूमने जाते हैं, यदि मेरे दोस्त बोले कि तुम इतना बजे आ जाना स्टेशन पर, ये कहीं पर बोले इंतजार कर, इंतजार हमको करने लगते हैं ना, और वो नहीं आते, लेट करते हैं, तो बहुत ही गुस्सा होता है, इतना गुस्सा होता है कि बोला कि इतना टाइम बोला था, इतना टाइम आया नहीं, और कभी कभी तो हमको अकेला भी जाना पड़ जाता है, मेरे साथ ऐसा हुआ है,
0: और साथ ही साथ टाइम भी वेस्ट हो जाता है इंतजार करने के कारण,
1: टाइम भी वेस्ट हो जाता है। और देखिए जैसे कि कोई गाड़ी, जैसे कि कोई लोकल ट्रेन जैसे हम पकड़ते हैं यहाँ पर हम लोग पास में तो स्टेशन है, तो हमने लोकल एरिया में कहीं जाते हैं कुछ किसी काम से, तो दोस्त बोलता है कि आज हम भी आएंगे, है ना, आज हम भी काम है, हम दोनों संग में चला जाए, और मतलब ये

0: मतलब पक्का हो गया कितना बजे हम लोग जाएंगे शाम के समय, है ना, घूमने के लिए? कोई काम से जाएंगे, वो अपना काम करेगा, हम अपना काम से जा रहा है, दोनों एक जगह जाना है, दोनों का काम मतलब एक ही जगह है। तो क्या होता है मतलब कि आज शाम को मिलते हैं 6 बजे, तो उसमें क्या है हम तो चल आते रेडी होकर, लेकिन जो मेरा दोस्त है वो लेट कर देता है, वो लेट कर देता है 10 मिनट, इससे क्या होता है कितना जो है ट्रेन जो होता है वो छूट जाता है, तो उस समय तो और हमको गुस्सा आता है।
1: बिल्कुल, मतलब एक की लेट की वजह से पूरा काम लेट हो जाता है हर किसी का।
0: जी हाँ, हम जब फोन करते हैं तो बोलता है कि और लेट हो गया, मेरा सर काम में बिजी हो गया था, क्या बोल, फोन करते तो इस तरह की बातें सुनने को मिलता है,
1: और क्या बोले, बिल्कुल सब कुछ कहा भी नहीं जा सकता है,
0: कहा भी नहीं, कोई दोस्त से खफा नाराज तो होना ही है, एक दिन खफा रहेंगे दूसरा दिन बात।
1: हाँ वैसे ही दोस्ती, तो दोस्ती का मतलब तो यही होता है। बिल्कुल
0: बिल्कुल, बस इतना ही बोलना चाहूंगा आज के टॉपिक के बारे में।
1: थैंक यू सो मच जीतू जी हमसे साझा करने के लिए अपने दोस्तों की मजेदार दिलचस्प किस्से। थैंक यू। तो दोस्तों स्टूडियो में समय हो चला है 10:41 और 50 सेकंड, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप अपनी दोस्त ज्योति के साथ, सिर्फ और सिर्फ 107 FM रेनबो पर। तो दोस्तों बातों और गीतों का सिलसिला यूं ही चलने वाला है ठीक सुबह के 11 बजे तक। तो चलिए दोस्तों गपशप को आगे बढ़ाते हुए अगले गीत की ओर रुख करते हैं।

0: आज के दिन।
1: तो दोस्तों आज 16 जून के दिन कई कारणों से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस की। यह दिवस उन करोड़ों प्रवासी कामगारों के योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है जो अपने परिवारों से दूर रहकर काम करते हैं और अपनी आय का एक हिस्सा अपने घर भेजते हैं। यह धनराशि न केवल परिवारों की आवश्यकताओं को पूरा करती है बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर जीवन स्तर में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह दिवस हमें परिवार के प्रति समर्पण, जिम्मेदारी और प्रेम की भावना का संदेश देती है। और दोस्तों आज के दिन भारतीय सिनेमा प्रेमियों के लिए भी खास है क्योंकि आज प्रसिद्ध अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती का जन्मदिन है। 16 जून 1950 को जन्मे मिथुन चक्रवर्ती ने अपने अभिनय और नृत्य शैली से भारतीय फिल्म जगत में एक अलग पहचान बनाई। डिस्को डांसर जैसे फिल्मों में उन्होंने देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोकप्रिय बनाया। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित मिथुन दा आज भी अपनी प्रतिभा और सादगी के लिए दर्शकों के बीच प्रिय है। तो दोस्तों 16 जून हमें परिवार के प्रति समर्पण, पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी और मेहनत तथा प्रतिभा के महत्व का संदेश देते हैं। तो आइए इन प्रेरणाओं को अपने जीवन में अपनाएं और इस दिन को सार्थक बनाएं।

बोले, लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर ये झूठ हमारी जिंदगी में ना हो तो दोस्ती कैसे लगेगी? दोस्तों की ये झूठ असल में कोई धोखा या फरेब नहीं होते, ये तो वो हक है, वो प्यार है, वो मस्ती है जो हमारी इस बोरिंग सी जिंदगी को खूबसूरत बनाती है। आज हमारे पास दुनिया भर की समझदारी है, लेकिन दोस्तों के साथ बैठकर वो जो बिना लॉजिक के झूठ बोलना और एक दूसरे की टांग खींचना, वही तो था असली सुकून। तो दोस्तों, ये वक्त सच में पंख लगाकर उड़ जाता है और हमारी आज की नॉनस्टॉप गपशप का ये आखिरी, जी हाँ, आखिरी हिस्सा आ गया है। आज दोस्तों की इन यादों में खोकर मेरा दिल तो पूरी तरह से रिफ्रेश हो गया। तो दोस्तों, चलते चलते बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगी कि इस भाग दौड़ और मैच्योरिटी वाली दुनिया में अपने उस और छोटे दोस्तों को कभी पीछे मत छोड़ देना। काम अपनी जगह है, लेकिन वो यारियां अपनी जगह है। आज जब ये शो खत्म हो तो अपने उस 5 मिनट में आ रहा हूँ वाले दोस्त को फोन लगाइए या उसे मैसेज कीजिए और कहिए, भाई मुझे पता है तूने हमेशा मुझसे झूठ बोला है, लेकिन तेरी उस झूठी दोस्ती के सामने दुनिया के सारे सच फीके हैं। जी हाँ दोस्तों, अब वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। फिर जल्द मुलाकात होगी इसी समय इसी स्टेशन पर, जी हाँ 107 FM पर, और कुछ नई गपशप के साथ। तो दोस्तों, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए, जी हाँ, आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप। तो दोस्तों, अपनी दोस्त ज्योति को दीजिए इजाजत और जाते जाते आप सभी के लिए एक मधुर तराना छोड़े जाती हूँ। दोस्तों, यूं ही सुनते रहिए, साथ बने रहिए सिर्फ 107 FM।

0: जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ रिंकू जी, आपके सामने तीन का तड़का कार्यक्रम के साथ। आप सुन रहे हैं 107 एफएम रेनबो, तीन का तड़का कार्यक्रम रिंकू के साथ। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात बता दूं, क्योंकि आज का जो शाम शुरू हुआ है अभी, वो कुछ खास है, क्योंकि शाम का ये वक्त बड़ा भी भारी होता है। और उनके लिए जिनके पास उनकी पसंद का तड़का नहीं होता, लेकिन वो घबरा जाते हैं। पर दोस्तों, आप घबराइएगा नहीं, मैं आपके साथ हूं और इन सुरीले गीतों के साथ आपके साथ। आइए सुनते हैं तीन का तड़का।
1: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं तीन का तड़का। तीन का तड़का, तीन का तड़का, 107 एफएम रेनबो पर। तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, 107 एफएम रेनबो पर, रेनबो पर, रेनबो पर।
0: जी हाँ दोस्तों, सूरज के साथ अपनी सारी चिंताएं को ढल जाने दीजिए, क्योंकि बस आप है और मैं हूँ, यही हसी नगमे है। और सुनते रहिए मेरे साथ तीन का तड़का, क्योंकि दोस्तों, जब आसमान का रंग थोड़ा गुलाबी और थोड़ा नारंगी होने लगे, तो समझ लेना कि कुदरत भी मोहब्बत की तरह ही है। और कुदरत के साथ हम भी आपकी उन सभी प्यारे भरी गीतों की बात करते हैं। तो आइए, वक्त की बर्बादी नहीं करते हुए सुनते हैं तड़के का वो पहला गाना, विशाल ललानी और के नीति मोहन की आवाज में। ये

जी हाँ दोस्तों, अभी आपने विशाल डडलानी, केके और नीति मोहन और साथ में थे बप्पी लहरी की म्यूजिक, ये धुन आपने अभी सुनी। आप तो जानते ही हैं कि ये फिल्म गुंडे फिल्म की है। वैसे इस गीत में एक बात है कि इसका जो जादुई म्यूजिक है लोगों को अपने आप आकर्षित करता है। जी हाँ, सच कह दूं तो कुछ गाने ऐसे होते हैं जिन्हें कितनी बार भी सुन लो हर बार दिल के किसी कोने को छू ही जाता है। और दोस्तों, जैसा कि मैं जान रही हूं कि बाहर जो है सूरज अभी धीरे धीरे ढल रहा है और आसमान का रंग गुलाबी हो रहा है, तो ऐसे में अगर हाथ में आपके अदरक वाली चाय का कप है और जनाब जीने का मजा तो फिर दुगना क्या तीन गुना बढ़ जाएगा। वैसे आज की शाम को और भी हसीन बनाने के लिए मेरे पिटारे में है अभी नीरज श्रीधर की आवाज में ये गीत, आइए सुनते हैं।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे यशराज बैनर के तले फिल्म। ये पिक्चर जो थी बहुत ही हसीन पिक्चर, जिसे आपने अपने लव में शामिल किया था। जी हाँ, फिल्म थी लव आजकल, और इरशाद कामिल ने इस गीत के बोल लिखे थे। संगीत जो दिया था प्रीतम ने, गीत गा रहे थे नीरज श्रीधर। दोस्तों लव आजकल बहुत ही रोमांटिक फिल्म, सैफ अली खान इसमें हीरो, और देखने में तो ये फिल्म बहुत सादी लगी, लेकिन जब आप पूरी गीतों को सुनेंगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा। वैसे जब मैंने अपने पिटारों को खोलना चालू किया तो एक से बड़े एक गीतकार निकले और गायक निकले। वैसे दोस्तों अभी मेरे पिटारे में और भी कई गीतकार है जो गायक है, आपके होश उड़ा देंगे। वैसे अपनी जो सीट है ना, उसकी पेटी को बांध लीजिए, क्योंकि जो अगले कुछ समय है मैं आपको उन सुरों को, उन यादों के साथ ढेर सारी बातें भी बताऊंगी। लेकिन दोस्तों आपको उस गीतकार के पास ले चलती हूँ, उस गीतकार के गीत सुनाऊंगी जिसने हमें प्यार करना सिखाया। जी हाँ, 90s का वो दौर जिसकी मखमली आवाज के साथ जिसने हर दिल को छुआ, वो थे उदित नारायण। जी हाँ, उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज में ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, वैसे तो ये गीत जो है उदित नारायण और श्रेया घोषाल की मखमली आवाज में सुनाई गई थी। वैसे दोस्तों गीत तो गीतों के साथ समय का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, लेकिन हमारे पास जो समय है ना बहुत ही कम है। सुइयां जो है टिक टिक करते हुए मुझे बताई जा रही है कि तड़का कुछ ही देर में अभी समाप्त होगा। दोस्तों बिल्कुल देरी नहीं करते, सुनाते हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में फिल्म साया से ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे अलका याग्निक और उदित नारायण को फिल्म साया के साथ। लेकिन घड़ी की सुइयां जो है ना, मैं आपको बोल रही थी कि आगे बढ़ी जा रही है और हो गए हैं 3:27:19। तो अभी आपको हमारे लिए एक लास्ट गाना सुनाऊंगी, क्योंकि कुछ ही देर में हमारा एक स्पॉन्सर प्रोग्राम जाने वाला है 3:30 से, आप सुनेंगे इसे। तो जो तो जाते जाते बस इतना कहूंगी कि जिंदगी में चाहे कितनी भी भागदौड़ हो, शाम का कुछ वक्त जो है खुद के साथ जरूर बिताइए, मेरे साथ जरूर बिताइए और गाने के साथ जरूर बिताइए। आइए सुनते हैं अरिजीत सिंह और शाश्वत सिंह की आवाज में ये गीत, और सुनते सुनते आप स्पॉन्सर प्रोग्राम सुनना ना भूलें।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, 107 FM रेनबो पर, तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।

0: पतंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
1: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। करते हैं एक बार फिर से कार्यक्रम की शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। इन्होंने पर्यावरण संदेश भेजा है, लिखते हैं,
2: आज जल पेट्रोल डीजल बचाओगे कल बहुत सुख पाओगे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत पर्यावरण संदेश के लिए। अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा बेबी आराध्या साहू लिखते हैं,
2: आदरणीय अजीत सर जी, विमलेश मैम जी, सब प्रेम नमस्ते। इस हफ्ते ये भी जानिए, मैं फूलों की जानकारी से हमारा हर पल महक उठा। बहुत सुंदर जानकारी थी। नव तपा की इस चिलचिलाती गर्मी में इन फूलों की जानकारी ने हमें शीतलता प्रदान की। प्रोग्राम की शानदार, मस्त, मनभावन, लाजवाब प्रस्तुति के लिए NCERT की पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं एवं साधुवाद। आपकी इस अथक मेहनत को हम दिल से नमन करते हैं।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें प्रोत्साहित करने वाले इतने सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
2: मिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
1: और कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
2: और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संदेश श्रोताओं हमें हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। इसी तरह से भेजते रहिए संदेश और जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ।
2: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस श्रृंखला की कड़ियों में हम लेकर आते हैं देश विदेश की रोचक जानकारियाँ,
1: इतिहास, भूगोल, विज्ञान, साहित्य और अनेकानेक विषयों की जानकारियाँ।
2: आशा है आपको वे जरूर पसंद आती होंगी। तो अजीत जी, क्या विषय रहेगा हमारा इस सप्ताह की चर्चा का?
1: विमलेश जी, इस सप्ताह हमारी चर्चा होगी भारत की अनूठी और खूबसूरत झीलों के बारे में।
2: जी अजीत जी, बहुत अच्छा विचार है। तो श्रोताओ, इस सप्ताह हम आपको उमंग कार्यक्रम के माध्यम से लेकर चलेंगे भारत की सुंदर झीलों तक और लेंगे उनकी रोचक जानकारियाँ। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि झील किसे कहते हैं या इसकी सामान्य परिभाषा क्या है।
1: श्रोताओ, सामान्य भाषा में कहें तो धरती के किसी गड्ढे नुमा भाग में चारों ओर से घिरा हुआ स्थिर जल का संग्रह झील कहलाता है। यहाँ का पानी खारा और मीठा दोनों हो सकता है। वैसे कई झीलों में जलधाराएं भी गिरती हैं। लेकिन श्रोताओ, एक प्रश्न और उठता है कि चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ जल का संग्रह ये तालाब भी तो हो सकता है, तो तालाब और झील में अंतर क्या है? जी आपको बताते हैं, तकनीकी रूप से तालाब और झील अलग अलग हैं। सबसे पहली बात, झील का आकार सामान्यतः बहुत बड़ा होता है जबकि तालाब का अपेक्षाकृत बहुत छोटा। झील की गहराई बहुत अधिक होती है जबकि तालाब की अपेक्षाकृत कम। झील का निर्माण अधिकतर, यदि आप ध्यान दें तो, प्राकृतिक होता है जबकि अधिकांश तालाब मानव निर्मित होते हैं। तो श्रोताओ, ये थी सामान्य जानकारी झील की। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अनोखी झील के बारे में। इसका नाम है लोकटक झील। ये भारत के मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर मोइरंग में स्थित है। श्रोताओं, आपको बता दें कि

0: लोकतक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। झीलें तो बहुत हैं हमारे देश में, लेकिन आइए जानते हैं जरा कि इस झील में ऐसी कौन सी बात है जो इसे दूसरी झीलों से अलग बनाती है। तो आपको बता दें श्रोताओं, लोकतक झील को तैरते हुए द्वीपों वाली झील कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि तैरती हुई झील का क्या मतलब, तो आपको बताते हैं कि इस झील पर मिट्टी, पौधों और ऑर्गेनिक चीजों से निर्मित घने दलदली समूह हैं जो तैरते हुए द्वीपों की तरह दिखाई देते हैं, जिन्हें हम फोमदी कहते हैं। सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है। और श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि इस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जिसका नाम है केबुल लामजाओ। लेकिन एक प्रश्न श्रोताओं मन में आता है, और मुझे लगता है कि ये भी आपको बहुत रोचक लगेगा कि आखिर ये द्वीप तैरते कैसे हैं। जी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दें। एक बड़ी दिलचस्प बात है, इम्फाल हवाई अड्डे पर उतरने वाले अधिकांश यात्री विमान लोकतक झील के ऊपर से ही गुजरते हैं। विमान की खिड़की से झील साफ साफ दिखाई देती है, और ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे झील पर बहुत सारी गोल गोल सी दिखने वाली आकृतियां हैं। तो अब आप पूछेंगे कि ये आकृतियां क्या है, तो आपको बताते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया, इन्हें स्थानीय भाषा में फुमदी कहा जाता है। ये इतने मजबूत होते हैं कि इन पर लोग झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। और हाँ श्रोताओं, इन झोपड़ियों में उनके पालतू जानवर भी रहते हैं। यहाँ रहकर लोग छोटी मोटी खेती भी करते हैं और मछलियां पकड़ते हैं। आपको एक बात और बता दें कि लोकतक झील को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। वे आसपास की सुंदरता को देखते हैं और बोटिंग करते हैं। जी हाँ श्रोताओं, लोकतक झील सैलानियों के आकर्षण का केंद्र तो है ही। कहा जाता है कि मणिपुर में यदि लोकतक झील नहीं देखी तो फिर कुछ नहीं देखा। आपको बता दें, लोकतक झील जैव विविधता से भरी हुई है। यहाँ लगभग 233 जलीय पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो श्रोताओं, कभी यदि आप इस क्षेत्र में आए तो अक्सर दुकानों में, होटलों पर और सामुदायिक स्थानों में आपको हिरण की तस्वीर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, इसे संगाई हिरण कहते हैं। इसे नाचने वाला हिरण भी कहा जाता है। ये दुर्लभ हिरण यही मिलता है, और ये मणिपुर का राजकीय पशु है। लोकतक झील के आसपास ये बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो श्रोताओं, आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले आपको बता दें कि लोकतक झील मणिपुर की जान है, क्योंकि विद्युत उत्पादन से लेकर जलापूर्ति और हजारों लोगों की आजीविका का ये मुख्य आधार है। तो यदि कभी आपको इम्फाल जाना हो तो अपनी घूमने की सूची में सबसे ऊपर रखिए लोकतक झील। सचमुच यहाँ फुमगी से बने हुए तैरते द्वीपों को जब आप देखेंगे तो सचमुच आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत की प्रसिद्ध अनूठी लोकतक झील की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, लोकतक झील में तैरते द्वीप किस चीज से बने हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, लोकतक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं? हाँ, आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। आप हमारा IBS नंबर भी नोट कर दें, 8800440559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की अद्यतन जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं आज का सबसे पहला कार्यक्रम, वो आखिरी पत्ता।
1: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों।
1: साथियों, आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कक्षा 9 की अंग्रेजी की पूरक पाठ्य पुस्तक मोमेंट्स के एक पाठ की कथा नाट्य प्रस्तुति। शीर्षक है द लास्ट लीफ, यानी आखिरी पत्ता।
2: ये कहानी प्रसिद्ध अमेरिकी कहानीकार ओ हेनरी द्वारा 1905 में लिखी गई थी। ओ हेनरी का पूरा नाम था ओलिवर हेनरी। तो आइए सुनते हैं ये कथा नाट्य प्रस्तुति।
1: अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। इसी शहर का एक बहुत सुंदर कस्बा है जो ग्रीनिच विलेज के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक रूप से ये बहुत ही रमणीक और सुरम्य गांव है। इसीलिए इस गांव में अक्सर बहुत से चित्रकार आया करते थे,
2: ताकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को वो अपने कैनवस पर उतार सकें और दुनिया के सामने ग्रीनिच गांव की खूबसूरती का नजारा पेश कर सकें। इसी ग्रीनिच गांव में एक दिन दो लड़कियां रहने के लिए आईं। वो दोनों चित्रकार थीं और वो भी वहां के सौंदर्य को अपने कैनवस पर उतारना चाहती थीं।

0: एक थी कैलिफोर्निया से और एक थी मेन से।
1: इन लड़कियों में से एक का नाम था जॉन्सी और दूसरी का नाम था सू। दोनों साथ साथ रहने लगी और उन्होंने चित्रकारी शुरू कर दी।
2: अरे जॉन्सी, तुम इतनी सुबह सुबह अपना पेंट ब्रश और कैनवस लेकर कहाँ चल दी?
3: ओ सू, ग्रीनिच के सुहाने सूर्योदय को अपने कैनवस पर उतारना जो है।
2: अरे हाँ, तो चलते हैं और यहाँ की सुंदरता को घर लेकर आते हैं, वो भी अपने अपने कैनवस पर।
3: यस।
0: साथियों, वो मिली तो थी वसंत के महीने में, लेकिन धीरे धीरे शरद ऋतु शुरू हो गई और अब भयंकर सर्दी का मौसम था। उस भयंकर शरद ऋतु में अचानक एक अजनबी ने ग्रीनिच गांव में प्रवेश किया और उसने अपने ठंडे हाथों से लोगों को छूना शुरू किया। उस अजनबी को डॉक्टरों ने नाम दिया था मिस्टर निमोनिया। उसके ठंडे स्पर्श में राहत नहीं थी बल्कि मौत थी। अब ये महामारी बन गई थी दोस्तों। बहुत से लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, जिनमें एक जॉन्सी भी थी। वो गंभीर रूप से बीमार थी और दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी।
1: उसकी मित्र सू उसकी बहुत सेवा करती थी। बड़ी मुश्किल से उसने किसी डॉक्टर से संपर्क किया और दवाओं का इंतजाम किया। एक दिन जब डॉक्टर उसे देखने आया तो उसने नोट किया कि जॉन्सी उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही है, बस हां हूं कर रही है। डॉक्टर ने एक खास बात नोटिस की कि जॉन्सी बस खिड़की की ओर लगातार देखती जा रही थी।
0: साथियों, डॉक्टर ने उधर भी देखा लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने सू से कहा,
4: सू
2: जी,
4: जॉन्सी तुम्हारी दोस्त है।
2: जी हाँ
4: भाई, मुझसे तो वो ठीक से बात नहीं कर रही। जरा उससे पूछकर मालूम करो कि उसे ऐसी क्या तकलीफ है।
2: जी डॉक्टर साहब।
4: और वो क्यों हमेशा खिड़की की तरफ देखती रहती है?
2: मैं पूछती हूँ।
1: दूसरे दिन सू ने गौर से देखा तो उसे समझ में आया कि जॉन्सी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से खिड़की के बाहर किसी चीज को घूरते हुए कुछ बुदबुदा रही है।
0: वो धीरे से उसके पास गई और सुनने की कोशिश करने लगी।
5: 15, 40
2: क्या?
1: थोड़ी देर के लिए वो चुप रही, फिर उसने गिना, लेकिन इस बार उसने कुछ जल्दी में गिना, जैसे कुछ जल्दी जल्दी घटित हो रहा हो।
5: 13, 12, 11 ओह
2: जॉन्सी,
5: अब सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है सू।
0: सू ने जॉन्सी को झकझोरा और पूछा,
2: क्या गिन रही हो?
5: 11, 10, 9 ओह, उस दिन वो करीब 100 थे, लेकिन सू, अब वो बहुत कम हो गए हैं।
2: क्या कम हो गए हैं?
5: पहले मुझे गिनने में मुश्किल होती थी, लेकिन हाँ, अब मैं इन्हें गिन सकती हूँ, आसानी से गिन सकती हूँ सू।
1: सू ने फिर से बाहर देखा। खिड़की के सामने बस एक आईवी क्रीपर का पेड़ था जो पतझड़ की मार से बहुत बुरी हालत में था, लगभग अधमरा सा। बस कुछ पीली पत्तियां दिखाई दे रही थी। सू ने उसे दोबारा झकझोरा और पूछा,
2: जॉन्सी, उस दिन क्या 100 थे जब कम हो गए हैं? तुम क्या गिन रही हो?
5: 6, now it's 6, 5, 4 ओह
2: जॉन्सी, जॉन्सी तुम्हें क्या हो गया है? मुझे डर लगने लगा है। खिड़की में तो कुछ नहीं है, तुम क्या गिन रही हो? उधर नहीं, मेरी तरफ देखो जॉन्सी।
5: Only 4

0: तरफ देखो।
1: So, only four. Oh, अब सिर्फ तीन बचे हैं।
0: क्या तीन बचे हैं? What's three, dear?
1: तीन पत्तियां।
0: पत्तियां?
1: हाँ, खिड़की के पास जो आईवी क्रीपर का पेड़ है ना सो।
0: हाँ हाँ,
1: मैं उसकी पत्तियां गिन रही हूँ। मुझे लगता है।
0: क्या लगता है?
1: यही कि बस अब तीन पत्तियां बची हैं, और जिस दिन आखिरी पत्ता गिर जाएगा ना, उस दिन
0: क्या जॉनसी?
1: उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
0: ओह नो, ये क्या कह रही हो तुम जॉनसी? ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है।
1: नहीं, ये तय है सू कि उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
0: हाँ
1: सू, अब सिर्फ तीन पत्तियां बची हैं, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास सू।
0: ओह जॉनसी।
2: साथियों, सू ने उसे बहुत समझाया। उसी दिन डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर ने भी बहुत समझाया, सारे तर्क दिए, लेकिन जॉनसी मानने को तैयार नहीं थी।
3: अचानक उस दिन कुछ अजीब सा हुआ। एक बूढ़ा व्यक्ति जॉनसी को देखने आया। सभी उस बूढ़े व्यक्ति को सनकी और लगभग पागल समझते थे।
2: उस व्यक्ति का नाम था मिस्टर बेयरमैन। वो बहुत दिनों से ग्रीनिच गांव में रह रहे थे।
3: वो चित्रकार थे। बहुत बार उन्होंने चित्रकारी में असफलता देखी थी और लोगों का मजाक भी सहा था। वो घर घर घूमकर हमेशा लोगों से कहा करते थे,
4: मैं अपनी चित्रकारी से एक मास्टरपीस बनाना चाहता हूँ जो अब तक नहीं बना पाया, लेकिन बनाऊंगा जरूर।
2: लोग उसे देखते ही उससे कतराने लगते थे। लोग उस पर हंसते और कहते, देखो मास्टरपीस वाला बुड्ढा आ रहा है। जब वो जॉनसी को देखने के लिए आए तो सू ने उन्हें बताया कि वो किस वजह से पत्ते गिन रही है।
3: इतने में जॉनसी ने अपनी दुर्बल आवाज में फिर से गिना,
1: अब सिर्फ दो पत्तियां ही बची हैं।
2: मिस्टर बेयरमैन ने बड़ी खामोशी से सू को देखा और एक लंबी सांस लेने के बाद गंभीरता से कहा,
4: जॉनसी, अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन देखना तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी ही तुम्हें देखने आऊंगा।
2: इतना कहकर तेज कदमों से मिस्टर बेयरमैन वहां से चले गए।
3: अब मात्र दो पत्तियां ही बची थीं। दूसरे दिन की शाम एक पत्ता और गिर गया। सुबह हुई तो जॉनसी ने देखा अब सिर्फ एक ही पत्ता बचा हुआ है। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो सोचने लगी,
1: आखिरी पत्ता अब शायद गिरने ही वाला है। अब मेरी चंद सांसें बाकी हैं। आखिरी पत्ता गिरने ही वाला है, बस गिरने ही वाला है।
2: साथियों, जॉनसी खिड़की की ओर देखती रही और इस तरह पूरा दिन बीत गया, पर वो आखिरी पत्ता अभी भी वहीं था। हैरत की बात तो ये कि दूसरा दिन भी बीत गया पर पत्ता वहीं का वहीं था। जॉनसी खिड़की की ओर टकटकी लगाए बैठी रही और इस दौरान बर्फबारी के साथ

0: बाद पतझड़ के मौसम की बारिश शुरू हो गई। साए साए आंधी चलने लगी। रात भर रुक रुक कर बारिश होती या बर्फ गिरती।
1: जैसे ही सुबह हुई, जॉन्सी ने सू से कहा,
2: सू मेरी दोस्त।
3: हाँ जॉन्सी।
2: जरा वो खिड़की खोल दे, मैं देखना चाहती हूँ कि वो आखिरी पत्ता वहाँ है या नहीं। खोल सरक खिड़की सू।
0: सू की तो मानो रूह ही कांप गई थी। कांपते हुए हाथों से डरते डरते सू ने खिड़की खोली। जॉन्सी ने खिड़की की ओर देखा, लेकिन आश्चर्य, वो पत्ता अभी भी गिरा नहीं था। सुहानी सुबह थी, मंद मंद हवा चल रही थी। आकाश मानो पूरी तरह से धुला हुआ था। चमकता हुआ सूरज निकल आया था। वो आखिरी पत्ता हवा में कांपता हुआ अभी भी वहीं का वहीं था। फिर अचानक जॉन्सी को कुछ हुआ और उसने सू को बुलाया और कहने लगी,
2: सू।
3: हाँ जॉन्सी।
2: सू, ऐसा लगने लगा है कि मुझे नई जिंदगी मिलेगी। मैं नहीं मरूंगी।
3: हाँ बिल्कुल,
2: अब मैं नहीं मरूंगी सू।
3: बिल्कुल जॉन्सी।
2: हाँ, इसलिए ये पत्ता नहीं गिरा।
3: पत्ता?
2: हाँ, मेरी सोच अच्छी नहीं थी जो मैंने अपनी मृत्यु के बारे में सोचा। देखो ना, वो पत्ता अभी भी वही है।
3: हाँ,
2: हाँ,
3: मैंने देखा, मैंने देखा जॉन्सी, मैंने देखा।
2: देखो, अब वो वहीं पर है। अभी वो नहीं गिरा सू।
3: हाँ जॉन्सी, वो वहीं पर है, वहीं पर है।
2: हाँ, हाँ।
1: दो दिन और बीत गए, वो पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी अब ठीक होने लगी थी। डॉक्टर ने आकर उसे चेक किया और कहा,
4: गुड, थैंक गॉड, अब इसकी तबीयत अच्छी हो गई है, ये लड़ाई जीत जाएगी।
1: जॉन्सी मुस्कुराई और उसने खिड़की की ओर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था, पर डॉक्टर के जाने के बाद सू ने कहा,
3: जॉन्सी, कैसा महसूस कर रही हो?
2: बेहतर।
3: ये लो कॉफी पियो।
2: थैंक यू
3: जॉन्सी। एक बुरी खबर भी है।
2: क्या हुआ?
3: वो मिस्टर बेयरमैन, उनकी कल अस्पताल में मौत हो गई।
2: कौन बेयरमैन? वही बूढ़े कलाकार?
3: हाँ।
2: ओह, जो मुझे उस दिन देखने आए थे?
3: हाँ वही।
2: ओह, जो कहते थे मैं मास्टरपीस बनाऊंगा, वही ना?
3: हाँ वही मिस्टर बेयरमैन।
2: ओह गॉड,
3: उनकी हालत दरअसल उस दिन बहुत खराब हो गई थी जब तुमने वो आखिरी पत्ता देखा था। जॉन्सी, मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ।
2: क्या?
3: क्या कभी तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि सारे पत्ते इस पतझड़ में गिर गए, पर वो आखिरी पत्ता
2: क्यों नहीं गिरा?
3: हाँ,
2: क्यों नहीं गिरा? आखिर क्या हो सकता है सू?
0: जॉन्सी सोच में पड़ गई। फिर सू ने कहा,
3: जॉन्सी, जिस दिन वो आखिरी पत्ता बचा था ना, उसके दूसरे दिन किसी ने

0: मिस्टर बेहरमन को हमारी ही खिड़की के पास बहुत बुरी हालत में पाया।
1: ओह,
0: उनके जूतों में बर्फ भरी हुई थी और उनके पेंट ब्रश और कैनवस इसी आईवी क्रीपर पेड़ के पास पड़े पाए गए थे।
1: ओह,
0: जहां वो रात भर पेंटिंग करते रहे।
1: पेंटिंग?
0: हाँ।
1: कैसी पेंटिंग?
0: जो पत्ता तुम देख रही हो वो कुछ और नहीं लेकिन मिस्टर बेहरमन की पेंटिंग है, जो उन्होंने आखिरी पत्ते के गिरने के बाद उस कड़कड़ाती सर्दी वाली रात में उस पेड़ पर चिपका दी थी।
1: ओह, तो वो पेंटिंग है?
0: हाँ।
1: असली पत्ता नहीं है?
0: नहीं।
1: लेकिन सू, कितना असली लग रहा है।
0: हाँ जॉन्सी, बिल्कुल असली है ना मास्टरपीस?
1: हाँ सू, मास्टरपीस। वो कहा करते थे कि मैं कभी ना कभी मास्टरपीस बनाऊंगा और सू, उन्होंने बना दिया।
0: हाँ जॉन्सी,
1: आखिर बना दिया उन्होंने मास्टरपीस सू।
0: हाँ, उन्होंने बना दिया।
1: उन्होंने बचा दिया मुझे, उन्होंने मेरी जान बचा ली सू, बचा लिया उन्होंने मुझे, उन्होंने मरने से बचा लिया मुझे सू।
0: हाँ
1: मास्टरपीस।
0: हाँ
1: मास्टरपीस। वो आखिरी पत्ता, वो आखिरी पत्ता।
2: डबडबाई आंखों से जॉन्सी ने एक बार फिर से खिड़की के बाहर देखा। वो आखिरी पत्ता वहीं था जो अब मास्टरपीस बन गया था।
3: ग्रीनिच गांव के कलाकार एक एक करके आ रहे थे और उस आखिरी पत्ते को विस्मय और श्रद्धा से निहार रहे थे। जॉन्सी और सू की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे, मानो वे अश्रु अविरल बहकर उस बूढ़े कलाकार को श्रद्धांजलि दे रहे हो।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वो आखिरी।

0: सोशल मीडिया पर कभी ऐसी सामग्री न भेजें जिससे किसी की भावना को चोट लगे। छानबीन किए बिना और सत्यता की जांच किए बिना किसी भी सूचना को शेयर न करें। सावधान रहें और जिम्मेदार नागरिक बनें। NCERT द्वारा जनहित में जारी।
1: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उमंग और ये हमारा आकाशवाणी का विशेष कार्यक्रम था। आप इसे विशेष शो में यानी कि 3 का तड़का शो में सुन रहे थे। और अभी मैं बता दूं कि इस वक्त घड़ी में टिक टिक करती हुई सुइयां 3:59 हो चुकी है। जी हाँ, अब क्योंकि 4 बजने वाले हैं और आपको याद आ गया कि तड़का का जो समय होता है 3 से लेकर 4 तक ही होता है।

0: दोस्तों आपसे इजाजत मांगना चाहूंगी मैं रिंकू, क्योंकि आप सुन रहे थे एफएम रेनबो 107 एफएम पर रिंकू के साथ ये कार्यक्रम तीन का तड़का।
1: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं तीन का तड़का। तीन का तड़का, तीन का तड़का, 107 एफएम रेनबो पर। तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, 107 एफएम रेनबो पर। रेनबो पर।
0: जी हाँ दोस्तों, तीन के तरके से मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ रिंकू आरजे। जी हाँ सुनो दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है हवाओं को गुनगुनाते हुए? क्या आपने कभी बारिश की बूंदों में किसी की आहट महसूस की है? शायद की है, क्योंकि आपके दिल के तार भी कहीं ना कहीं इन्हीं महसूस और हवाओं में जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, मोहब्बत भी कोई ऐसी ही चीज है। नमस्कार, सलाम और आदाब, मैं हूँ आरजे, आपकी दोस्त रिंकू, और इस हसीन रात के सफर में आपका मैं स्वागत करती हूं 107 एफएम रेनबो में हमारे कार्यक्रम छायालोक।
1: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 एफएम रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक
0: जी हाँ दोस्तों, इस पुराने गीतों में, पुराने सफर में और इस हसीन रात के हम सफर में मैं आपके साथ और आप मेरे साथ सुन रहे हैं आपका सबसे पसंदीदा शो प्यार भरे नगमे। जी प्यार भरे नगमे,
2: प्यार भरे नगमे।
0: दोस्तों मोहब्बत भी अजीब सी चीज है, ये किसी वजह से नहीं होती, बस बेवजह हो जाया करती है। जी हाँ, ऐसे ही बेवजह चीजें ही आपको आपके दिल के करीब भी पहुंच जाती है। किसी की मुस्कुराहट पर दिल हार जाता है और किसी के इंतजार में घंटों आप इंतजार में ही निकाल देते हैं। यही तो है प्यार का असली रंग। दोस्तों प्यार के असली रंग के साथ हम भी आपके उन सभी गीतों को लेकर आए हैं जिनको आप प्यार से याद करते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं और सुनते हैं ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत। दोस्तों वैसे आशिकों की बात है और दोस्तों मोहब्बत की बात है, किसी की वजह नहीं होती इसमें, कुछ भी बेवजह भी नहीं होता, किसी की मुस्कुराहट भी बेवजह नहीं होती और किसी के इंतजार भी। दोस्तों आज उन्हीं सभी आशिकों और दिल के प्रेमियों की गीतों को, यादों को हम अपनी गीतों के माध्यम से पिरोकर पूरी माला बनाकर आपके सामने हम पेश करते जाएंगे। दोस्तों आप सुनते रहेंगे ऐसे गीतों को जिसके आप बेहद करीब हैं, आप चाहते हैं उन गीतों को, और साथ में इस तरह की बातें जो आप सुनना चाहते हैं। आइए सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल को उदित नारायण के साथ। वैसे दोस्तों, प्यार भरे नगमे तो हम यूं ही बोलते रहते हैं, लेकिन प्यार भरे नगमे तभी हो पाते हैं जिससे आप याद करें। वैसे दोस्तों, हमारे समय में जो हमारे गीतों का समय है 7:00, वो समय में तो आप सभी ऐसे ही गीतों को सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। दोस्तों क्या करें कि गीतों का ये सफ़र जो है बहुत सुहाना होता है, और सुहाने गीतों के सफ़र में प्यार भरा नगमे अगर सुन रहे हैं आप, तो वो तो खुशियों का माहौल ही है। तो चलिए बड़े ही कड़ी आवाज़ में फिर से अनुराधा पौडवाल को सुनते हैं, और साथ में है उनके बाबला मेहता।

जी हाँ दोस्तों, 90 का दशक वो दौर हिंदी सिनेमा और संगीत का जो कि स्वर्ण युग यानी कि गोल्डन एरा माना जाता है। इस दौर के गीत में जो सादगी, जो सुरीलापन और जो मेलोडी थी वो आज भी लोगों के दिलों को छू लेती है। दोस्तों उस दौर में अनुराधा पौडवाल के साथ अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति और ना जाने

कितनी अनगिनत ऐसे कलाकार जिनके गीतों को आज हम रेडियो में बजाते हैं और उनके प्यार भरे नगमों को आप सुनते चले जाते हैं। तो दोस्तों आइए सुनते हैं उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज में ये गीत।

0: से 80 के दशक में कहीं धुंधली सी हो गई थी, खो सी गई थी, जिसे 90 के दशक के संगीतकारों ने, गीतकारों ने संभाल लिया। और दोस्तों शायद इसीलिए तो मैं आज आपके सामने बैठी हूँ, प्यार भरे नगमे सुना रही हूँ, और प्यार भरे नगमों के साथ इन सभी बातों को आप छायालोक में ही सुन रहे हैं।
1: प्यार भरे नगमे

0: मिक्स और रिक्रिएशन का हो गया हो, लेकिन जब दिल को सुकून चाहिए होता है ना, तो कदम खुद ब खुद लौट आते हैं वही पुराने 90 के दशक यानी कि 90s की गलियों में, जहां ये वो दौर है जहां हर गाने में एक कहानी होती थी। जी हां, ये वही दौर है जहां कुमार सानू की आवाज में आशिकी होती थी। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही इन आवाजों को सुनते हैं। उदित नारायण की आवाज में साथ ही है उनके बहुत सारे गीतों के, लता मंगेशकर और साथ में है उनके बाला सुब्रमण्यम। आइए सुनते हैं ये गीत।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun.

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल के साथ जॉली मुखर्जी को फिल्म साथी से। दोस्तों ऐसी ही जादुई आवाज जो 90 के दशक में छाई हुई थी और प्यार भरे नगमे के साथ हम 107 एफएम रेनबो में मैं रिंकू यानी कि आरजे रिंकू आपके साथ जुड़ी हुई हूँ और ऐसे ही जुड़ी रहेंगे। वैसे मैं क्या, सभी कलाकार जो आकाशवाणी के हैं वो सभी आपके साथ यूं ही प्यार भरे नगमे बजाते रहेंगे। दोस्तों आज का दौर भले ही

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल के साथ मनहार की, मनहार उदास की आवाज में फिल्म सड़क से ये गीत। गीत के बोल लिखे थे समीर ने और संगीत से सजाया था नदीम श्रवण ने। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हम प्यार भरे नगमे भरे गीत आपके सामने रूबरू रख रहे हैं और छाया लोक में आप सुन रहे हैं आज रिंकू को 107 FM रेनबो में। क्योंकि ये प्यार भरे नगमे हैं तो प्यार से हम बातें भी कर रहे हैं और आपको गीत भी सुना रहे हैं। तो चलिए अभी तो सुना आपने अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास को, अब सुनते हैं कुमार सानू को।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक
1: प्यार भरे नगमे,

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज फिल्म प्रेम दीवाने से। वैसे ये फिल्म ज्यादा चली नहीं थी मगर इसके गीत बहुत चले थे और इसमें थे जैकी श्रॉफ, साथ में थी माधुरी, पूजा भट्ट और विवेक मुशन। दोस्तों बात कर रही हूं मैं प्यार भरे नगमे से आरजे रिंकू, आप सुन रहे हैं 107 FM रेनबो पर ये हमारे प्यार भरे नगमे में छाया लोग। दोस्तों रात ढल रही है और यादों का जो कारवा है अभी भी बाकी है, तुमसे मिलने की वो एक हसरत अभी भी बाकी है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको फिर और भी गीत सुना रहे हैं, आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़।

जी हाँ दोस्तों, लता मंगेशकर की आवाज में सच में वो जादू है कि आप तो क्या मैं भी सुनती रहती हूँ ये गीत। वैसे दोस्तों, हमारे एफएम रेडबो में बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, बहुत सारे ऐसे गीत हैं जिसके आप दीवाने बनते चले जाएंगे। चलते सुनते हैं सुदेश भोसले को और कविता कृष्णमूर्ति को।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर।

जैसे इन सभी गीतों ने इन सभी हीरो हीरोइन को बहुत ज़्यादा सर पे बिठा दिया था। वैसे आमिर खान जो चाइल्ड आर्टिस्ट माने जाते थे, ऐसी ही फिल्मों के हिट दे दे के वो अब ऐसे हीरो बन चुके हैं जो परफेक्शनिस्ट कहा जाते हैं। कि हाँ, और कहे जाए क्या, पूजा भट्ट भी इन्हीं अदाकारों में से एक थी जो इन्हीं संगीतों के कारण वो नंबर वन की पोजीशन पे आ गई। दोस्तों, ऐसे ही गीत जो 90s की दुनिया में कदम रखकर लोगों ने अपनी छाप छोड़ी, आइए सुनते हैं ऐसे ही अलका याग्निक उदित नारायण की आवाज में ये गीत।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: प्यार भरे नगमे,

0: दोस्तों आप भी मेरे साथ साथ आशा भोसले के साथ साथ जिंदगी के रंग का मजा लीजिए और रंगीले हो जाइए, क्योंकि आप सुन रहे हैं 107 एफएम रेनबो पर, जी हाँ, छायालोक और प्यार भरे नगमे।
1: प्यार भरे नगमे

0: क्या
1: मैं क्यों बेचैन रहता हूँ?
0: क्यों
1: मेरी इस बेकरारी की वजह क्या है, बता दूँ क्या
0: क्या?

जी हाँ दोस्तों, कुमार शानू और अलका याग्निक को आप सुन रहे थे ऐसे ही दौर में, क्योंकि 90 के दशक की बात ही कुछ अलग सी थी। ऐसे ऐसे गीत और ऐसे ऐसे नगमे, वो कहते हैं ना कि जिक्र तुम्हारा ही होता हर एक नगमे में, जिक्र तुम्हारा ही होता है हर एक नगमे में, तुमसे शुरू और तुम पर ही खत्म कहानी होती है। दोस्तों ये रात तो बस एक बहाना है तुम्हें याद करने का, वरना दिल में तुम्हारी महफिल तो हर वक्त सजी होती है। जी हाँ, आप 107 FM रेनबो में ऐसे ही प्यार भरे नगमे को सुनते ही रहते हैं। हम एक से एक बहाने आपके लिए खोज कर लाते हैं कि आपको उन बहानों के साथ उन नगमों को सुनाए करें। तो चलिए इसी बहाना के साथ एक और गीत आशा भोसले की आवाज में।

जी हाँ दोस्तों, आशा भोसले को आप सुन रहे थे। क्या आप मान रहे थे कि ये उन्हीं गीतकार है जो 60 और 70s के दशक में गाते थे और साथ में 90 के दशक में भी गा रहे हैं। वैसे दोस्तों, कहते हैं कि धड़कन को कुछ इस तरह से बहकते देखा है कि तुम्हारे आने से बंद कलियों को महकते देखा है। प्यार क्या है अगर कोई मुझसे पूछे, तो मैंने अपनी आंखों में तुम्हारा चेहरा चमकते हुए देखा है। दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी बता रही है कि 8:52 होने को चले हैं, रात ढल रही है और यादों का जो कारवा है अभी भी बाकी है। हम अभी भी आपके सामने प्यार भरे नगमे को तैयार है, लेकिन वो क्या है ना कि विदा लेना पड़ेगा, क्योंकि घड़ी की टिक टिक टिक टिक टिक सुइयां तेजी से चल रही है और ये कार्यक्रम जो है एक नहीं दो घंटे का तो था, लेकिन फिर भी मन अभी भरा नहीं। इसी बात पे विदा ले रही हूं आज की इस रात, इस वादे के साथ कि कल फिर मिलेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे प्यार नगमे, प्यार भरे नगमे अभी बाकी है। तो इसी गीत के साथ रिंकू को अलविदा कहने का मौका दीजिए। फिर मिलूंगी मैं आपसे रेमो फर्नांडिस की आवाज में। आप ये गीत बॉम्बे फिल्म से सुनते रहिए और रिंकू को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

प्यार भरे नगमे। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।